0: நேரம் 12:55.
1: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை ததா பாரத் கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை பேராமிலிட்டரி கே அர்த்த சைனிக் பலோ கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை ரக்ஷா மந்திராலய சே லேகர் தேஷ் கே एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
3: दंभ का स्तंभ खंधम धम त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से भिन्न न खेल गगन फाड़ के। ज्वाल से बवाल से

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ஆகாஷ்வாணி மதுரை எஃப்எம் ரெயின்போ 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9 பட்டாம்பூச்சிகள் நிகழ்ச்சியில சிங்கம் புனரி ஸ்ரீ சேவுக்கமூர்த்தி உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களுடைய பல்சுவை நிகழ்ச்சியை கேட்டு ரசித்தோம். நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்ற எல்லா மாணவர்களுமே ரொம்பவே அருமையா தெளிவா பேசினாங்க. இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது பட்டாம்பூச்சிகள். நன்றி நேர்களே. அமைப்பில் உதவி சுந்தரி, நிகழ்ச்சி அமைப்பு கே வேல்முருகன்.
1: ஆகாஷ்வாணி பாட்காஸ்ட்.
2: நமஸ்கார், I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to the Akashwani podcast. इस पॉडकास्ट पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खास शख्सियत को लेकर आए हैं. कहते हैं ना कि हर चेहरे के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं और हर किरदार के पीछे कई सारे अनुभव होते हैं. तो आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, राइटर हैं, इंजीनियर हैं और आज हमारे गेस्ट भी हैं. इन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बहुत खूबसूरती से अपनी रियल लाइफ में यूज किया और अपनी कला को और गहरा और निखारा. जी, आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर निलय मिताश. नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है.
3: थैंक यू सो मच हरप्रीत जी फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन.
2: प्लेजर इज आवर्स. और मैं जरूर पूछूंगी कि किस तरीके से आपने अपनी रियल जिंदगी के अनुभवों को अपनी एक्टिंग में यूज किया, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कैमरा पर हम सब ने देखा है कि निलय मिताश कौन है, क्या करते हैं. सबको आपने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन ऑफ कैमरा निलय कौन है?
3: हरप्रीत जी, आपने तो पहला ही क्वेश्चन एक तरह से लाइफ का जवाब मांग लिया. बिकॉज ये जवाब तो मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ कई सालों से कि निलय है कौन. आई मीन निलय मिताश तो मुझे नाम दिया गया है. अगर मेरा नाम मेरे माता पिता ने कुछ और दे दिया होता तो क्या मैं कोई और होता? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ दिया है.
2: तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं.
3: हाँ बिल्कुल.
2: सो निलय कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, आपकी जर्नी कैसे रही और क्या बचपन से इंटरेस्ट था एक्टिंग में?
3: जी, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आता हूँ. और देखिए, आप छोटे शहर में ना आप ये नहीं सोचते हो कि आप एक्टर बनोगे. एक्टर वर्ड तो यूज भी नहीं होता, हीरो बनोगे.
2: हीरो बनोगे,
3: ये आपके सोच के मच बियॉन्ड है.
2: जी.
3: कभी ये नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या हीरो बनूंगा, पर हाँ फिल्मों से मुझे बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा. मैं हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था.
2: ओके.
3: और बाथरूम में जाके एक्टिंग प्रैक्टिस करता था.
2: लवली.
3: क्योंकि मैं बाहर नहीं कर सकता था. वहाँ
2: बाहर करते तो डांट पड़ती.
3: हाँ, डांट पड़ती. कर क्या रहे हो भाई, ये पढ़ाई करो, जाओ. बिकॉज दैट्स व्हाट आई थिंक माय माइंड वाज ट्रेन्ड कि बचपन से पढ़ाई करो. इंजीनियर तो बनना ही है. इंजीनियर तो आपका मतलब ऑप्शन, अगर आप आईएएस नहीं बनते तब इंजीनियर बनना.
2: ओके.
3: So that is what the mentality was over there. So, पर मुझे पिक्चरों से बहुत प्यार था और मैं बचपन से ही थोड़ा ड्रामेटिक इंसान रहा हूँ.
2: तो आप बचपन से एक्टिंग करते थे दरवाजा बंद करके?
3: हाँ.
2: लेकिन कभी स्कूल में एक्ट किया या कभी कुछ प्ले में पार्टिसिपेट किया?
3: नहीं, मैं स्कूल या प्ले में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मैं एक्टिंग रियल लाइफ में करता था.
2: रियल लाइफ में? रियल लाइफ में. प्लीज हमें बताइए कैसे.
3: उधर अपने बिहार तरफ ना उसको एक्टिंग नहीं कहते थे, नौटंकी कहते थे.
2: ओके.
3: आपने सुना होगा ना, बच्चे लोग स्कूल नहीं जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते थे.
2: जी.
3: मैं बहाना नहीं बनाता था, मैं बिलीव करता था कि मुझे पेट दर्द हो रहा है.
2: मतलब आप पहले बिलीव करते थे?
3: हाँ.
2: और फिर एक्ट करते थे?
3: एक्ट करने की जरूरत ही नहीं. मैं आपको एक बात बताऊं, लोग पूछते हैं एक्टिंग कैसे करते हो. एक अच्छे

0: एक्टर को ना एक्ट नहीं करना होता है,
1: ओके
0: दे जस्ट हैव टू लिव अ कैरेक्टर। सो विडंबना ये है कि एक अच्छे एक्टर को अगर सक्सेसफुल होना है, रियल लाइफ में एक्टिंग करना होता है और रियल लाइफ में जीना होता है।
1: तो आप उस एक्सपीरियंसेस को, उन एक्सपीरियंसेस को जीते थे कि
0: जीता था,
1: अभी मेरे पेट में दर्द हो
0: मुझे
1: रहा
0: बिलीव
1: है,
0: होने
1: आपको
0: लगता था।
1: बिलीव होने लगता था।
0: सो उसको अपेरेंटली मुझे बाद में पता चला कि उसे मेथड एक्टिंग कहते हैं।
1: वाह, तो इसमें हम
0: बट
1: जरूर पूछेंगे आपसे कि क्या एक्टिंग सीखी जा सकती है, लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहती
0: जी
1: हूँ कि चलिए पेट दर्द का बहाना किया, स्कूल नहीं
0: हाँ
1: गए, और
0: हाँ
1: इसके अलावा कुछ ऐसा बड़ा कारनामा किया कि पेरेंट्स को पक्का यकीन हो गया कि आप शायद एक्टर बन सकते हैं।
0: हाँ देखो, उन्हें यह यकीन नहीं हुआ कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, बट हाँ उन्हें ये यकीन हो गया कि
1: एक्टिंग कर
0: ये लड़का का पढ़ाई में ज्यादा स्कोप नहीं लग रहा
1: सकता
0: है। एक बार मुझे, मैं ना बहुत ही नटखट था, बहुत ही नॉटी था, तो मुझे हॉस्टल में रख दिया गया था। एंड आई वॉज लाइक, मैं छोटा बच्चा था, आई वॉज लाइक मुझे जाना ही नहीं है, हॉस्टल नहीं जाना है। एंड माई डैड वॉज लाइक जाना तो पड़ेगा। उस समय मुजफ्फरपुर से रांची बस चलती थी, वो एक अलग ही जमाना था, बस चलती थी, उसमें वीडियो कोच लगा रहता था। एंड वी यूज टू वॉच, उसमें पायरेटेड मूवीज दिखाते थे। एंड मैं रास्ते भर अपने पापा को बोलते रहा कि पापा सोच लो एक बार, मुझे नहीं जाना है। कि उस लाइक मैं सोच लिया तो मैं तो जाना ही पड़ेगा, तुम बैठे हुए हो। वी रीच रांची बस स्टॉप पे, मैं एक बार आखिरी बार पूछा, पापा पक्का? उन्होंने बोला पक्का। मैं वहां जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये इंसान मुझे किडनैप करके ले जा रहा है।
1: ओह माय गॉड,
0: मतलब वहां भीड़ गैदर हो गई थी, पापा मेरे पापा को पीटने वाले थे
1: ओह माय
0: लोग। ही
1: गुडनेस,
0: समहाउ कन्विंस देम कि मैं उनका बेटा हूं।
1: मुझे लगता है कि आई थिंक वो सबसे बड़ा रोल था आपका बचपन
0: आई
1: में।
0: कन्विंस सो मेनी पीपल कि आई वॉज बीइंग किडनैप्ड।
1: मासेस को आपने
0: हाँ
1: मतलब एक
0: मासेस
1: रियल
0: को
1: टाइम में कन्विंस
0: रियल
1: कर दिया।
0: हमें बच्चा था।
1: जी,
0: सो तभी मुझे पता चला कि हाँ नौटंकी तो अच्छा कर लेता हूँ।
1: नौटंकी कर लेते
0: हाँ
1: हैं। एंड देन उसके बाद जैसे आपने बताया कि हमारे इंडियन
0: जी
1: हाउस होल्ड्स में एक कन्वेंशनल यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करें, स्टेबल जॉब करें, फिर कैसे एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, कैसे कन्विंस किया घर वालों को और खुद को सबसे पहले?
0: कुछ डिसीजन आप अपने लिए खुद लेते हो, कुछ डिसीजन बस आई डोंट नो डेस्टिनी ले लेती है। मैं कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर बनूंगा, मैं तो इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग के भी बाद एमबीए करने का प्लान था,
1: अच्छा।
0: बट समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ, आई लॉस्ट माय मदर। एंड देन यू गेट अ पर्सपेक्टिव कि ठीक है, सक्सेसफुल हो के पैसे कमा के भी उसका क्या फायदा, पैसे तो जान नहीं बचा सकता ना। एंड ऑल्सो वेन यू लूज एवरीथिंग, यू नो वेन यू लूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको हारने का डर खत्म हो जाता है। तो मेरा हारने का डर खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या था, अगर जीना है तो जो मन कर रहा है तो वो करता है। तो मुझे मन किया उस समय ये भी, तब भी मैं ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं एक्सीडेंटली एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया बैंगलोर में ही, एंड दैट वॉज एन इम्प्रोव थिएटर ग्रुप।
1: मतलब अपने आप को उस दुख से उबारने के लिए कह
0: हाँ
1: सकते हैं।
0: हाँ सॉर्ट ऑफ शुरुआत में इट वॉज एन एस्केप, मैं बस कुछ करना था, देखता हूँ कुछ तो करूँ, एटलीस्ट एक्टिंग करने में मजा आता है, इसलिए ज्वाइन किया
1: एंड यू हैड अ स्टेबल जॉब साइड बाय साइड, आप
0: था।
1: काम भी कर
0: यस
1: रहे थे।
0: यस
1: और मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि बचपन से ही आपको फिल्मों से बहुत प्यार था, और आज हम बैठे भी आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, तो वो दिन भी ऐसे थे जब दूरदर्शन पर पुरानी फिल्म्स आती थी। तो कुछ ऐसा याद है कि स्क्रीन पर आपने किसी हीरो को देखा, बिकॉज हीरो यू नो वहां पर
0: हीरो
1: हीरो ही होते हैं,
0: हीरो
1: एक्टर्स
0: हीरो
1: नहीं,
0: हीरो
1: हीरो को देखा और सोचा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, या मेरा मन कर रहा है कि मैं भी करूं।
0: मुझे तो बचपन के विजुअल्स याद है, DD1 पे चंद्रकांता की कहानी। ये माना है पुरानी शक्तिमान, मैं पागल था ये सब देखने के। उस समय छोटे शहर में लाइट कट जाती थी, तो अब आई वॉज लाइक ढूंढो किस घर में जनरेटर है,
1: वाह,
0: बिकॉज
1: एपिसोड मिस नहीं होना
0: एपिसोड नहीं मिस
1: चाहिए।
0: होना चाहिए, बिकॉज उस समय ये नहीं था ना OTT की, फिर कभी भी देख लो। आई वॉज
1: जी
0: लाइक ये हो ही नहीं सकता है, कहीं से भी धन जनरेटर ढूंढ के लाओ। एंड आई वॉज सो जिद्दी, आई वॉज लाइक माई डैड, आई वुड स्टार्ट क्राइंग, आई वुड से कि अगर अगर मैं मिस कर गया ना ये, तो फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। आई यूज टू इमोशनली ब्लैकमेल माई पेरेंट्स। फॉर दिस
1: तो

0: पढ़ाई में आप कैसे थे?
1: मैं एक्चुअली पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था. आई हैड अ वेरी एनालिटिकल ब्रेन, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, सो उन चीज़ों में काफ़ी अच्छा था. इन फैक्ट नाउ आई थिंक कि एक्टिंग में भी वो मुझे बहुत हेल्प करता है.
0: सो फिर जब एक्टिंग का सोचा, थिएटर ज्वाइन किया, तो कब वो मोमेंट आया जब लगा कि नहीं, अब इसी रास्ते पर चलना है, जॉब को पीछे छोड़ देते हैं और नई डायरेक्शन पकड़ लेते हैं लाइफ में? कब लगा ऐसा?
1: लाइक आई टोल्ड यू आफ्टर दैट मदर्स डेथ आई वॉज डूइंग दैट, बट अ डे हैपेंड वेन जब मैं सोच रहा था मैं करूँ या ना करूँ. एंड दैट डे वेन आई वॉज गोइंग टू ऑफिस मेरा एक्सीडेंट हो गया ऑटो से. एंड फॉर मी इन माई माइंड इट वॉज हैपनिंग इन स्लो मोशन, धीरे धीरे धीरे ऐसा हुआ. एंड आई थॉट आई लॉस्ट माई लाइफ, बट आई डिड नॉट. बट मुझे जवाब मिला एक, तुम रिस्क एनालिसिस कर रहे थे, जिंदगी खत्म होने वाली थी. टेक्निकल
0: वो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड यहाँ पर चला.
1: रिस्क एनालिसिस का मतलब ही चेंज हो गया एंड मैं नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया.
0: तो हम आपके इंट्रोडक्शन में एक्टर, राइटर और रिस्क टेकर भी जोड़ सकते हैं.
1: मेरी कहानी पूरी फिल्मी है
0: जी
1: तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट आएंगे. मैं तो घंटों बात कर सकता हूँ, बहुत फिल्मी कारनामे किए हैं मैंने. लाइक मुझे तो कभी कभी लगता है मैं रियल लाइफ में भी डायलॉग बोलता हूँ, लाइक नॉर्मली बात नहीं करता हूँ. लाइक माई पेरेंट्स एंड पीपल क्लोज टू मी दे क्रिटिसाइज.
0: तो ऑफ
1: अच्छा
0: कैमरा भी हम कह सकते हैं कि नीले एक्टिंग करते रहते हैं.
1: हाँ, ऑफ कैमरा ही मैं एक्टिंग करता हूँ,
0: अच्छा,
1: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ.
0: ओके. बट आई होप यहाँ आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं अभी.
1: ऑन कैमरा मैं जीता हूँ, कैमरा ऑन है.
0: ऑलराइट. अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपने ज्वाइन किया थिएटर और उससे आगे बढ़ने की सोची, तो डेफिनेटली सबका सपना होता है कि मुंबई जाना है, माया
1: मुंबई
0: नगरी
1: जाना है.
0: बोलते हैं. अब यहाँ पर आना और स्ट्रगल करना, अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, पर बहुत अच्छा है. लेकिन जब आपने डिसीजन फाइनल लिया फाइनली, तो क्या फैमिली का सपोर्ट मिल गया? उन्होंने कहा खुशी खुशी जाइए मुंबई में और अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए, ऐसा कुछ था? जा निले, जी ले अपनी जिंदगी, समथिंग लाइक दैट.
1: नहीं, अमरीश पुरी जी नहीं थे
0: जी
1: मेरे डैड. सो थिंग इज लोगों को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ, कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो. एंड दे वुड हैव स्टिल सपोर्टेड मी अगर मैं अपने आप को हीरो नहीं समझता. मैं डायलॉग मार के आ गया ना, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की, मैं खुद से अचीव करके आऊंगा.
0: कदम कदम पर एक्टिंग की है
1: हाँ,
0: आपने.
1: तो
0: ऑलराइट.
1: ये जो मैंने बोल दिया ना, ये लाइन मुझे हॉन्ट किया है बहुत बार.
0: तो
1: जब
0: अभी
1: पैसे खत्म हो गए
0: यस, अब वापस कैसे
1: क्यों
0: जाएं?
1: बोला था मैंने.
0: ऑलराइट.
1: मैं मांग लेता ना, क्यों बोल के आ गया मैंने.
0: सो एक रिस्क लिया, मुंबई आ
1: हाँ.
0: गए, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था? कहाँ रहेंगे, खाना पीना, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, इतनी जल्दी काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑडिशंस की लंबी लंबी लाइनें. सो कैसे प्लान किया वो सब?
1: शुरू में ये प्लान ही नहीं था. शुरू में प्लान था एक्टिंग कोर्स करूंगा. एंड आई हैड दिस थिंग, मैं जो भी कोर्स करूं या कोई भी पढ़ाई करूं, आई वॉन्ट टू बी द टॉपर. एंड आई हैड दिस थिंग कि मुझे करना ही है. एंड वहाँ भी आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स. एंड मेरे माइंड में तो मैं निकलूंगा प्रोड्यूसर्स
0: अच्छा,
1: लाइन
0: लाइन
1: में कि
0: लगी होगी
1: हाँ
0: प्रोड्यूसर्स की आराम से.
1: आई विल चूज. मेरे दिमाग में था कि
0: ओ
1: ठीक है
0: यस.
1: यार, कॉमेडी नहीं करना है, थोड़ा
0: ओके
1: सीरियस से स्टार्ट करते हैं, कॉमेडी बाद में करेंगे फॉर अ चेंज.
0: लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर देयर, यू नो, लेट मी
1: यार
0: जस्ट पिक
1: राइट
0: एंड
1: राइट
0: चूज.
1: राइट. मैं दिमाग में कैलकुलेट करता था कि ठीक है देखना, यू नो स्टीरियोटाइप मत हो जाना शुरू में ही, ठीक है एक ही टाइप के रोल मत करना. मैं अपने दिमाग में ये सब प्लानिंग कर रहा था.
0: तो अपने दिमाग में आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश एक्टर थे, क्योंकि बचपन से ऑलरेडी काफी एक्टिंग कर ही ली थी आपने.
1: हाँ. मैं निकल के भी था, प्रोड्यूसर्स नहीं पहचाने थे,
0: बिल्कुल
1: उनकी गलती थी.
0: बिल्कुल. सो एक्टिंग जब आपने
1: हाँ
0: सीखी, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कहीं पर एक्ट करते वक्त पहली बार ना सुनने को मिला होगा, ये अच्छा नहीं किया, तो वो जो टॉपर माइंडसेट है उसको कहीं धक्का लगा, अरे मैं तो हमेशा सबसे आगे, अभी क्या हो गया?
1: देखिए, ना सुनना ये बात पे कि ये अच्छा नहीं किया, उससे पहले मुंबई ने बहुत ना सुना दिया.
0: जैसे
1: आप लाइन में खड़े रहते थे वहाँ ऑडिशन के लिए, एंड द वे एक न्यू कमर को, एक्टर को वहाँ ट्रीट किया जाता है, फिट फिट फिट नॉट फिट. हर एक जगह ऐसे बोला, हटो क्या कर क्या रहे हो, बोला ना नॉट फिट हटो.

0: मैं तो शॉक में था शुरू में, ये क्या ऐसे क्यों बात कर रहे हो भाई, और अगर मैं बन गया तो?
1: तो ऐसे जब ना सुनने को मिलता है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट होती है,
0: जी
1: क्योंकि आप एक अनजान शहर में हैं, फैमिली भी साथ में नहीं है कि घर चले जाएं तो थोड़ा वो पैम्पर कर दें।
0: जी
1: ऐसे वक्त में कैसे खुद को संभालते हैं, स्पेशली एज एन आउटसाइडर? आप एक छोटे शहर से आए हैं, बहुत सारे सपने हैं आपके, बट द वर्ल्ड इज़ नॉट वेरी काइंड टू यू।
0: मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, और मैं मानता भी हूँ कि एक एक्टर को अच्छा एक्टर बने रहने के लिए ना वल्नरेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं छोड़ नहीं सकता था, और मैं इमोशनली वल्नरेबल हूँ। मैं तो इनफैक्ट बहुत बार रोता हूँ।
1: तो इस माया नगरी में जहाँ पर कई
0: हाँ
1: प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इमोशनल होना एक वीकनेस नहीं माना जाता?
0: माना जाता, लोग मानते हैं कि इमोशनल होना वीकनेस है। इनफैक्ट मैं जहाँ से आया हूँ, मैं छोटे जगह से आया हूँ, वहाँ तो रोना बाई अ मर्द इज नॉट कंसिडर्ड गुड। मर्द
1: पर
0: मर्द होके रो रहे हो भाई?
1: आप रोते हैं।
0: मैं तो सिनेमा देख के रो देता हूँ। मुझे लगता है अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोना। आई थिंक दैट इज ब्रेव। एंड वाई टू टर्म इट कि मर्द होके, उसमें तो बहुत सारे कंसेप्चुअली गड़बड़ है कि ओके मर्द आर सपोज टू बी ब्रेव। नो आई डोंट थिंक सो। आई मीन इवन अगर आप बायोलॉजिकली हिस्टोरिकली भी देखिएगा, आई फाइंड वुमेन आर ब्रेवर देन मैन, दे हैव ऑलवेज बीन। देयर इज अ रीजन गॉड, प्रकृति, साइंस, किसी ने, आई मीन दे हैव गिवन वुमेन द राइट टू गिव बर्थ।
1: सो विमेन एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी ब्यूटिफुली, यू नो,
0: या
1: अपने दोस्तों से बातें कर ली, रो लिया, खुद को कहीं ना कहीं वे एक्सप्रेस करती हैं। आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो जब डाउन फील करते हो, लो फील करते हो? व्हाट्स योर कोपिंग मैकेनिज्म?
0: आई जस्ट गो क्वाइट, आई मे बी आई क्राई समटाइम्स एंड आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट समटाइम्स।
1: लिखते
0: आई
1: हैं, लिखते भी
0: हाँ
1: हैं।
0: कभी कभी लिखने लगता हूँ। इनफैक्ट एक बार बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट हुआ था। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, बाहर की तरफ देख रहा था, आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, एंड मैंने कुछ लिखा था। इफ यू
1: प्लीज
0: परमिट मैं
1: प्लीज
0: सुनाना
1: जी।
0: चाहूंगा। एंड उस समय मेरा बहुत डाउन चल रहा था, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है, हाउ डू आई फाइट।
1: मुंबई में थे आप?
0: मुंबई में, हाँ, तब मैंने लिखा था, आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे, अधूरे से जो ख्वाब रह गए थे उसे पूरा यही कराएंगे, दर्द जो लिया है उधार में अब उसका कर्ज उतारना है, मुस्कुराहटों के पीछे जो छुपा रखे हो अब उस समुंदर में डूब जाना है, तेज लहरें आएंगी, मझधार में तुम फंस भी जाओगे, लेकिन उसका सामना ही ना किया तो कभी तैरना ना सीख पाओगे, दुनिया की बातों पे जो एतबार करने लगे हो शायद खुद से ही थोड़ा कम प्यार करने लगे हो, कभी आंखें मूंद करके देख लो, शायद वो अनदेखा सच देख पाओगे, अंधेरे में जो देखना सीख लिया शायद मन के उस शांत पुकार को भी सुन पाओगे, आंसुओं को बहने दो, सैलाब तो अब यही लाएंगे।
1: दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत डीप है। मुझे लगता है कि शायद मैं पोइट वर्ड मिस कर गई आपके इंट्रोडक्शन में। आप बहुत अच्छा लिखते हैं,
0: थैंक
1: और आई थिंक मैं अब मेकआउट कर सकती हूँ कि कैसे आप उन लो मोमेंट्स से खुद को उबारते हैं, बाहर लेकर आते हैं। आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं आपने बताया,
0: जी।
1: लेकिन ये जो आपके इमोशंस हैं, आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपको एक्टिंग में हेल्प करते हैं? आपने कहा आपने एक्टिंग सीखी है,
0: जी
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या एक्टिंग सीखना जरूरी है? सीखकर आप अच्छे एक्टर बन जाते हैं, या ऐसे ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, जिंदगी के अनुभवों को अपने आगे रख के आप अच्छे एक्टर बनते हैं? क्या है ये अच्छा एक्टर बनने का फॉर्मूला?
0: देखिए, अच्छा एक्टर बनना या किसी भी फील्ड में एक्टिंग, किसी भी फील्ड में अच्छा करना, बेसिकली आप बात करना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में नॉलेजेबल इनफ होना,
1: जी
0: तो उसके लिए आपको कुछ सीखना तो पड़ेगा, बट उस सीख को कैसे आप परसीव करते हो। जैसे अगर एक्टिंग में देखे, बहुत सारे थ्योरीज है, माइजनर,
1: जी

0: मेथड एक्टिंग, स्टीफन बुक, मैंने सब पढ़ा, सब पढ़ा। बट अगर मैं उसको एब्सोल्यूट ले लूं कि दैट इज नॉलेज, तो मैं वहीं पे फंस गया। दैट इज अ परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन, उनका एक्टिंग का परसेप्शन है। मैं पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो उनका सोच किधर जा रहा है। अगर वो इंफॉर्मेशन लेके मैं अपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ के साथ कंबाइन करूंगा ना, तब शायद नॉलेज की तरफ बढ़ पाऊंगा। पर अगर उसको मैं फिक्स कर लिया, डिफाइन कर लिया कि यही सच है, तो मैं वहीं पे बंध गया। तो एक्टर तो छोड़ो, आप एक्टिंग तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि एक्टिंग करते करते कुछ ऐसा मोमेंट आया जहां पर आपको लगा कि अभी इससे बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं ज्यादा इमोशनल हो गया, कुछ ज्यादा ही आप उसमें इन्वॉल्व हो गए कि कहीं ना कहीं आप उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने लगे?
0: अभी हमारी जो सीरीज है हेलो हम बोल रहे
1: जी,
0: हैं,
1: इस पर हम बहुत विस्तार से भी चर्चा करेंगे। जी बताइए।
0: पर उसमें सुष्मिता मुखर्जी जी, शी प्लेड माई मदर, एंड एक बहुत ही इमोशनल सीन है बिटवीन पप्पू एंड
1: पप्पू योर कैरेक्टर।
0: या वो उनका एक बहुत ही इमोशनल सीन है सुष्मिता जी के साथ।
1: जी
0: एंड इट एंड्स विद ना बहुत ही प्यारा सा हग, माँ उसको ऐसे करती है एंड पप्पू उसके गोद में है। एंड आई वॉज एक्टिंग एंड सडनली व्हेन दैट हग हैपेंड ना, आई रिमेम्बर्ड अ फीलिंग जो शायद बहुत सालों से नहीं किया था।
1: आप मिस कर रहे थे।
0: या मिस क्या, वो महसूस जो है ना, वो एहसास समहाउ मैं भूल रहा था। एंड अचानक से वो एहसास जो फील हुआ ना, आई रिमेम्बर, ओ ओके, आई यूज टू हैव दैट। सो दैट वॉज समथिंग, यू नो, अच्छा भी लगा, हैवी भी लगा। एंड देन कट।
1: तो कट के बाद उस जोन से बाहर आने में टाइम कितना लगा?
0: सी दिस पर्टिकुलर इमोशन आई हैव ट्रेन माई माइंड, नाउ आई नो इट हैज, मतलब शुरुआत में ऐसे जब भी हुआ तो मैंने अपने अपने तरीके बनाए निकालने के। बट बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो मुझे इफेक्ट किए हुए। आई मीन
1: जैसे
0: वयम, वयम मूवी
1: या
0: अगर,
1: वयम पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पहला प्रोफेशनल जो असाइनमेंट था आपका एक्टिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे मिला, कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, फाइनली आपने एक्टिंग सीख ली और
0: हाँ
1: कुछ अपने इमोशंस से उसको निखार भी लिया, तो
0: हाँ
1: पहला असाइनमेंट क्या था?
0: ओके। मैं जब बैरी जॉन से निकला तो मुझे तुरंत एक असाइनमेंट भी मिल गया था। एंड मुझे लगा हो गया, यही तो मैं बोल रहा था तुम
1: यही
0: लोग
1: तो
0: को,
1: चाहिए था।
0: चाहिए था, दूर की बात है, मैंने तो
1: ओ
0: बोल दिया था, तुम ही नहीं सुन रहे थे। मैं क्या,
1: ओके।
0: देखो अब आगे देखना। वो सुपर फ्लॉप हो गई, शायद किसी ने नहीं देखा।
1: ओके, तो किसी ने नहीं देखा।
0: सो मैं उसको एक्टिंग डेब्यू ही नहीं
1: अच्छा ठीक है, तो
0: माना,
1: आप बताना चाहेंगे वो क्या था कि ढक्के रखना चाहेंगे उसको राज की
0: जब किसी ने
1: तरह?
0: देखा ही नहीं। तो मैं तो
1: शायद
0: डेब्यू
1: आप
0: अभी
1: देख लें।
0: डेब्यू अभी कर रहा हूं।
1: सो फिर यानी बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं, यू नो, ऑड एक्टिंग जॉब्स आते हैं जो एक एक्टर करता है, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है। व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू फाइनली रियलाइज दैट नाउ आई हैव अराइव्ड? वाज इट वयम?
0: आई स्टिल डोंट थिंक आई हैव अराइव्ड, बट एटलीस्ट वयम गेव मी समथिंग जो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जब जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि 14 साल में आपका नेटवर्क बन जाता है, यू स्टार्ट, यू नो, हैंगिंग आउट विद पीपल, फिर वो देखे, फिर वो दूसरों को देखे दिखाए, एक इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क बनता है। तो उनके अंदर ये बिलीफ हुआ कि अच्छा, ये ऐसे ही नहीं है, ये तो अच्छा एक्टर है, राइट? उससे पहले इट वॉज लाइक कि हाँ अच्छा है, हर जगह टॉप किया है, ये किया है। बट वयम ने उन्हें कुछ और एक प्रूफ दे दिया।
1: वयम आपकी जो सीरीज है उसमें आपने 10 डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं, एंड जब मैंने वो देखी तो मुझे मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल संजीव कुमार जी की मूवी नया दिन नई रात, कहीं ना कहीं मैं उसे रिलेट कर पा रही थी। उसमें उनके 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, वहां पर भी नवरस की बात होती है, बट वयम समवेयर इज अ बिट डार्क। सो कैसा था वो एक्सपीरियंस? और क्योंकि अभी आप इतने ज्यादा अनुभवी नहीं हुए हैं इस फील्ड में, और वयम जैसा आपको एक उस मूवी में एक किरदार निभाने को आपको मिला, इतने डिफरेंट शेड्स हैं, ग्रे शेड्स भी हैं, कभी ऐसा हुआ कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या अभी आई नीड मोर ट्रेनिंग, आई नीड मोर एक्सपर्टीज, कुछ ऐसा मोमेंट आया?
0: नहीं, ये कभी नहीं आया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट आई न्यू वेन

0: Vayam was written, I knew, I told Abhyank, जो डायरेक्टर है उनको, आई टोल्ड हिम कि मैं अवार्ड लेके आने वाला हूँ इसमें. आई टोल्ड हिम दैट टाइम ओनली, बनाने से पहले, कि मैं इसमें अवार्ड लेके आऊँगा. वो भी बोले कि हाँ पता है, वो तो आप लेके आओगे.
1: राइट
0: एंड आई वॉन्ट 3 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स. मैं तीन चीज़ हूँ, एन ऑडियंस, अ राइटर एंड एन एक्टर. एज एन ऑडियंस आई लव रोमांटिक कॉमेडी. आई लाइक रोमांटिक कॉमेडी, इवन गोविंदा वाली कॉमेडीज, आई वॉच दोज कंटेंट्स. एज अ स्क्रिप्ट राइटर आई हैव अ विजन, मैं कुछ बताना चाहता हूँ. मैंने अपने स्क्रिप्ट लिखे हैं और वो है चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को. एज एन एक्टर मैं जज नहीं कर सकता हूँ कैरेक्टर को.
1: हम सबके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी लाइफ में, जब बहुत इट इट गेट्स टू मच, तो फिर कोई वेकेशन पर चला जाता है, कोई रिलैक्स करता है, सो जाता है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो थेरेपी की तरह होता है.
0: या लेटली आई मीन आई आई आई गो ट्रैवलिंग. इनफैक्ट तमाशा मूवी आपने देखा है, उसमें हाय आई एम वेद, आई डू दैट.
1: वाह, दैट्स नाइस.
0: दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड, दैट साउंड्स वेरी प्रिविलेज्ड, आई नो. बट ठीक है, क्योंकि अब मैंने वो डायलॉग खत्म कर दिया ना कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा. वो डायलॉग
1: सो
0: दैट डजंट स्टैंड एनी
1: तभी
0: मोर,
1: वापस
0: अब
1: जाने
0: मैं ले
1: का,
0: सकता हूँ
1: अच्छा,
0: आपसे.
1: यानी वापस जाने का स्कोप है, ले सकते हैं जाके,
0: हाँ
1: स्कोप
0: हाँ अब ले
1: अब
0: सकता
1: ले
0: हूँ.
1: सकते
0: तो
1: हैं.
0: अब क्या है कि जरा मैं घूम के आता हूँ, पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ. कार्ड दे देना बस.
1: तो घूमते घूमते आप निकल गए ओटीटी पीबी वेव्स की तरफ और किया हेलो हम बोल रहे हैं. तो
0: हेलो.
1: हेलो हम बोल रहे हैं कि जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं
0: तो
1: बताएं.
0: पप्पू प्रसाद पांडे एकदम ही केयरफुली लड़का है, जैसे गांव के लड़के होते हैं. तो एक ऐसा इंसान, एक दिन उसके दोस्तों ने उन्हें बोला कि भाई तेरे पास लड़की क्यों नहीं है. एंड उस चैलेंज में एक दोस्त ने मास्टर प्लान निकाला कि मैं 100 लड़कियों के नंबर ला रहा हूं,
1: अच्छा.
0: एक ना एक तो कोई लड़की तुमको प्यार हो ही जाएगा, एक ना एक भाभी होगी.
1: अच्छा.
0: एंड उसी बकवास में ना ही एक्सीडेंटली कॉल्स अ गर्ल हु इज द हीरोइन ऑफ द शो, पाखीधारी, प्रतिभा तिवारी.
1: जी,
0: एंड देन एवरीथिंग टेक्स अ पॉलिटिकल एंगल,
1: पॉलिटिकल एंगल, आई कॉल
0: पॉलिटिकल
1: इट्स
0: एंगल.
1: कॉमेडी.
0: इट, अगर आप ट्रेलर देखे ना,
1: जी
0: उसमें हमने डिफाइन ही नहीं किया ये है क्या, क्या ये कॉमेडी है, क्या ये फैमिली ड्रामा है, क्या ये पॉलिटिकल एंगल
1: अब तो
0: है,
1: मुझे सस्पेंस भी नजर आ रहा है इसमें.
0: क्या ये सस्पेंस है. ये हमारी जो जिंदगी है, आपकी
1: जी.
0: जिंदगी, अगर मैं आपकी जिंदगी को जॉनर दे दूंगा, ठीक है, आपकी जिंदगी रोमांटिक है, आपकी जिंदगी पॉलिटिकल, कैसा लगेगा आपको.
1: जी.
0: वैसे ही ये पप्पू प्रसाद पांडे, पाखीधारी, पवन, सिंदूरी पान सिन्हा जो यशपाल जी प्ले कर रहे हैं, मेरी माँ सुष्मिता मुखर्जी,
1: जी
0: ये इन सब की कहानी है.
1: जी
0: कोई भी कहानी को जॉनर क्यों देते हो, कहानियां तो बस कहानियां होती है, उसमें हर जॉनर आते हैं. हमारी जिंदगी में दिन भर में 10 जॉनर आते हैं. तो वैसे ही हेलो
1: जी
0: हम बोल रहे हैं, जॉनरलेस है, बस कहानी है.
1: और ये कहानी बहुत रिलेटेबल भी है, गांव
0: जी
1: देहात की कहानी. यहाँ पर इमोशंस हैं, आपस में बॉन्डिंग नजर आ रही है फ्रेंड्स की.
0: जी
1: आपने एक मदर और सन के रिलेशनशिप की बात करी, और फिर वो जमाना जब कॉल कर कर आप यू
0: आए
1: नो मिस कॉल में हम सोचते थे मिस
0: मजा
1: कॉल देंगे,
0: आता
1: ब्लैंक कॉल करेंगे और आवाज
0: था.
1: सुनेंगे. तो ये जो है, हम जब आज बात करते हैं इंक्लूजन की, हर कोई वो कंटेंट देखना चाहता है जो रिलेटेबल हो. एक यूथ को उसके जैसा कंटेंट चाहिए, एंटरटेनिंग या एडवेंचरस. और जो हमारे एल्डरली लोग हैं, उनको उनके जैसा कंटेंट चाहिए. गांव देहात के लोगों को भी अपनी भाषा, अपने जैसा कंटेंट चाहिए. सो इसमें किस तरीके से वो एक एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, उस चीज़ को कैसे जिया आपने, कितने अपने पर्सनल एलिमेंट्स आपने पप्पू प्रसाद पांडे जी में डाले.
0: काश काश पप्पू प्रसाद पांडे जो काम करते हैं वो मैं कर पाता. वो
1: जी.
0: मैं बस माइंड में करता था बचपन में. ओके, साइकिल पे आगे लड़की को बैठा के घुमाना वो सब नहीं कर
1: अब
0: पाता
1: रोड्स रोड्स पे ही करना
0: था.
1: भी मुश्किल हो गया एक्चुअली.
0: हाँ, पर दिमाग में तो करते, कितने बार किए
1: हाँ,
0: होंगे बचपन में, पर वो
1: इमेजिनेशन.
0: होता नहीं
1: जी.
0: था. तो जैसे हमारे सेट पे भी हुआ था ये बात कि साइकिल पे आगे चलाना था, और मुझे साइकिल चलाना उतना अच्छे से आता
1: मैं
0: नहीं
1: पूछने
0: था.
1: वाली थी, साइकिल चलानी आती है आपको?
0: बचपन में मैंने चलाया था, पर किसी लड़की को तो आगे नहीं बैठाया था.
1: अच्छा, वो नया एक्सपीरियंस था.
0: हाँ, तो मैंने बोला प्रैक्टिस करना है, और उन्होंने प्रैक्टिस करा दिया. बर्थडे से सही से पूछो, मैंने ये नहीं बोला था हीरोइंस के साथ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए
1: ओके
0: तो वो एक्सपीरियंस इज नॉट द सेम, बट इट वॉज फन, इट वॉज

0: फन आई वॉज ट्राइंग टू से. हाँ, पप्पू प्रसाद पांडे जो है, मैं कॉलेज लाइफ में ना जो थोड़ा केयर फ्री था एंड थोड़ा बिंदास था.
1: अरे गांव की जो स्लो लाइफ होती है, उस स्लो लाइफ में रहने वाला इंसान, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, अपनी मस्ती में जी रहे हैं, वैसा है कुछ?
0: हाँ वैसे ही है, वैसे ही उन लोग, आई मीन उसमें डायलॉग है, चल भाई काम करने चलते हैं. हाँ चल, क्या काम?
1: अच्छा
0: चाय पीने.
1: अच्छा या वो देख लेंगे क्या करना
0: हाँ,
1: है
0: वो चलो तो सही,
1: जी
0: देखो तो सही, चाय
1: राइट,
0: पियो तो सही,
1: काम भी निकल जाएगा,
0: हो जाएगा,
1: हो जाएगा
0: देखेंगे
1: चाय।
0: काम क्या करना.
1: अभी आपने कहा कि हीरोइन की जगह असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए साइकिल पर
0: हाँ
1: बैठने के लिए। अभी जब हीरोइन बैठे होंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा अलग हो
0: हाँ
1: गया होगा सीन। मैं जानना चाहती हूँ एक एक्टर के लिए
0: हाँ
1: उसके जो को एक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है परफॉर्मेंस को अच्छा करने में, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में।
0: देखिए, ये जब मैंने एक्टिंग शुरुआत किया था ना, इवन बैरी जॉन में, मैं बहुत अच्छे मोनोलॉग्स देता था. ओके, एट द रिस्क ऑफ नॉट साउंडिंग वेरी हम्बल, आई वाज वंस टर्म किंग ऑफ मोनोलॉग्स.
1: ओके ग्रेट।
0: बट गिविंग अ मोनोलॉग इज समथिंग एल्स, ओनिंग अ स्टेज, यू परफॉर्मिंग, वो था. लेकिन जब आपको सीन करना होता है ना, तो एक दूसरा इंसान भी है.
1: जी
0: अब यहां आप अपना मोनोलॉग नहीं दे सकते हो, आपको समझना होगा. तो मैं शुरू में जब करता था, और अगर दूसरा एक्टर वीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं, हमारा सीन खराब हो गया,
1: ओके
0: और मैं खुद में सोचता था यार काश ये अच्छा एक्टर होता या होती, अच्छा सीन हो जाता.
1: तो
0: लेकिन आज
1: रीटेक रीटेक ले लें।
0: रीटेक, अगर वो, उन्हें उतना इमोशन ही देने नहीं आता है, या वो उतने अच्छे एक्टर ही नहीं है, तो मुश्किल हो
1: तो
0: जाएगा.
1: कम्युनिकेशन करना, बताना उनको इजी होता है?
0: मैं नहीं बताता था ना, मैं क्यों बताऊंगा, डायरेक्टर का काम है. बट ये एक्टर्स का, एक एक्टर दूसरे एक्टर को ये नहीं बोल सकता है भाई, थोड़ा एक्टर्स का ईगो होता है.
1: ओके
0: तारीफ कर सकता है, बुराई नहीं.
1: अच्छा, क्रिटिसाइज नहीं कर
0: हाँ,
1: सकते।
0: क्रिटिसाइज में, दे
1: ओके
0: टेक इट पर्सनली. अब एक दूसरी बात समझ में आई है कि एक्टर वीक कोई नहीं होता है, ठीक है, आपका परसेप्शन है. हो सकता है वो एक्टर कम इमोशन दे रहा हो सकता है वो फंबल कर रहा हो. व्हाट इफ मेरा जो पर्सन सुन रहा है उसको, वो उसको वैसे ही रिसीव करे जैसे वो पर्सन बोल रहा है या बोल रही है. अगर आप अपना रिसेप्शन चेंज कर दोगे ना, आपका एक्टिंग शायद उतना अच्छा ना लगे जितना आप करने वाले थे, पर
1: जी
0: उसका एक्टिंग अच्छा लगने लगेगा और उससे सीन बेहतर हो जाएगा.
1: राइट
0: और अगर सीन बेहतर हुआ, प्रोडक्ट बेहतर हुआ, फिल्म बेहतर हुआ, तो फिर आपका भी फायदा.
1: बिल्कुल
0: तो अब ये बात समझ में आई है कि हर जगह आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो.
1: या इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द अदर पर्सन एज वेल।
0: राइट राइट
1: जी
0: समटाइम्स टेकिंग अ बैक सीट
1: या
0: फॉर द फिल्म,
1: इज द
0: बिकॉज आई कम
1: वाइजेस्ट।
0: फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस कि मैं अभी भी ओल्ड स्कूल हूं, कर्म ही धर्म है, मतलब फिल्म मेरे लिए भगवान है, दैट्स इट,
1: जी
0: आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ इट. सो फिल्म का फायदा होगा, मेरे भगवान का फायदा होगा, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है.
1: तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता लाइफ कम्स ए फुल सर्कल, बचपन में दूरदर्शन देखना और आज पीबी वेव्स के साथ जुड़ना, हेलो हम बोल रहे हैं के जरिए। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस लाइक जिस एक स्क्रीन पर आप सोचते थे कि आप भी जाएं एक्ट करें, शक्तिमान आपने बताया,
0: शक्तिमान,
1: चंद्रकांता आपने बताया,
0: चंद्रकांता,
1: और आज पीबी वेव्स के साथ आप जुड़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
0: एक्सपीरियंस मेरे लिए तो आई एम रियली थैंकफुल टू पीबी वेव्स. सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूरदर्शन प्रसार भारती डिजिटलाइज हो गया,
1: जी
0: सो पीबी वेव्स इज लाइक द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐप ऑफ इंडिया, लाइक सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. और मुझे पीबी वेव्स का ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे ना बहुत सारे रिलेटिव इंडिया के बाहर रहते हैं,
1: जी
0: तो बहुत सारे जो प्राइवेट एप्स है वो वहां पे नहीं खुलते हैं, कहीं खुलते हैं कहीं नहीं खुलते हैं.
1: जी
0: बट इफ यू नो, पीबी वेव्स इज प्रेजेंट इन लाइक आई थिंक
1: या
0: 137 कंट्रीज और
1: वेल नाउ
0: 138
1: इट्स
0: कंट्रीज.
1: डिजिटल सो यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम एनी वेयर।
0: नो, बट देयर आर मेनी एप्स, प्राइवेट
1: ओके
0: एप्स जो
1: या
0: इंडिया के बाहर एक्सेसिबल नहीं है,
1: हाँ एग्जैक्टली
0: सो ऑल माई बहुत सारे रिलेटिव्स एंड ऑल वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं, बट दिस एवरी वन इज एबल टू वॉच,
1: तो व्यूज बढ़ रहे हैं
0: व्यूज बढ़ रहे हैं
1: फिर।
0: एंड

0: एंड जैसा कि आपने बताया, मैं
1: जी
0: DD1 पे वेट करता था कि आज कोई नई मूवी लगाने वाला है.
1: जी
0: उसमें दिखाता है ना एड कि ये मूवी आने वाला है किसी दिन, कोई नई मूवी. नई मूवी मतलब बस एक ही 2 साल पुरानी मूवी,
1: जी
0: दैट वाज न्यू मूवी.
1: सो मुझे लगता है कि आप काफी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि रेडियो पर गाने सुने तो आज आकाशवाणी में बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, दूरदर्शन पर मूवीज देखी और पीबी वेव्स पर खुद एक्ट भी किया. मैं एक चीज यहाँ पे ये भी जानना चाहती हूँ कि इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और हर तरह की सीरीज होती हैं, इस सीरीज में ऐसा क्या खास है, कोई इसे क्यों देखे, क्या यहाँ पर सबके लिए सब कुछ है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करके इसको बनाया गया है, मैं इसको क्यों देखूं, और क्योंकि वो भी तब जब भैया जी कौन है ये मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है.
0: देखिए, ये मुझे तो आप इसलिए, मुझे लगता है आप इसलिए देखिए ना कि हर जगह बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं. आइए ना, चाय पी के गप हो रहा है.
1: जिसकी बहुत जरूरत है,
0: हाँ,
1: एक लग्जरी एक्चुअली है.
0: कुछ कोई बहुत चीजों का तो मतलब नहीं है. अब इस सीन का क्या मतलब है भाई, ये 100 नंबर लाए हैं, कॉल करो, एक ना एक तो भाभी निकल जाएगी. और वो कॉल किए जा रहे हैं, कोई किसी को
1: जी
0: लग जाता है कॉल. वो एंड पप्पू प्रसाद पांडे, हेलो, हाँ कौन बोल रही है उधर से, जल्दी बताइए, जल्दी बात कीजिए, हमको स्कूल निकलना
1: जी
0: है. ईच वन टर्न्स आउट टू बी अ स्कूल गोइंग गर्ल एंड दे आर लाइक शॉक एंड देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग कि अच्छा ये तो गुनाह हो
1: तो
0: गया.
1: कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए और यहाँ पर इस को शूट
0: ये
1: करते वक्त.
0: शूट करते वक्त फनी इंसिडेंट्स बहुत हुए. वन थिंग आई रिमेम्बर वॉज दैट साइकिल शॉट आई वॉज सेलिंग. हाँ, तो वहां पे ना जब AD को एंड ऑल प्रैक्टिस कराता था, एवरीवन यूज्ड टू लाफ. गांव था,
1: ओ
0: कर
1: यस
0: क्या रहे हो, कर
1: जी
0: क्या रहे हो, बना क्या रहे हो, हीरोइन की जगह इसको. ही वॉज अ वेरी स्वीट AD, बट स्टिल. एंड देर वॉज अ थिंग, सब मुझे बोलते थे, हो हीरो, हीरोइन को गिरा मत देना. साइकोलॉजिकली प्रेशर था, गिरा मत
1: तो
0: देना.
1: आप कह सकते हैं आप हीरो बन गए हैं जो आप हीरो बनना चाहते थे.
0: हाँ, सो हेलो, हम बोल रहे हैं, आई फेल्ट लाइक अ बिट हीरो.
1: हीरो
0: वाई एम, आई वॉज जस्ट एन एक्टर, अ गुड एक्टर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स,
1: जी.
0: अलग अलग अलग 10 कैरेक्टर.
1: और अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए,
0: अच्छा,
1: व्हाट्स नेक्स्ट,
0: दैट्स नॉट पप्पू प्रसाद, पप्पू प्रसाद पांडे का कोई
1: उस जोन से
0: अपकमिंग
1: बाहर
0: प्रोजेक्ट,
1: निकलना
0: पप्पू
1: पड़ेगा.
0: प्रसाद पांडे का भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है.
1: ओके
0: लड़की को भगाओ, लड़की और चाय पियो, वो पप्पू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं
1: ओके
0: जो
1: अच्छा.
0: ज्यादा क्रिटिकल है. और मेरे भी एक दो हैं छोटे मोटे, नॉट एज इम्पोर्टेंट एज पप्पूज, बट है छोटे मोटे. सो
1: जी
0: आई एम फाइनली डेब्यूटिंग इन अ फिल्म एज अ लीड, एंड उसका
1: कंग्रेचुलेशंस
0: फाइनल शेड्यूल अभी आई थिंक अक्टूबर में होना चाहिए.
1: जी.
0: आई हैवन गॉट द डेट्स, बट दैट वुड बी माई डेब्यू
1: वाओ,
0: अगेन.
1: दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, एक और बात की जाती है इंडस्ट्री में, आउट ऑफ साइट मींस आउट ऑफ माइंड.
0: राइट.
1: कहीं ब्रेक ले लिया, थोड़े दिन नजर नहीं आए तो
0: हाँ
1: इंडस्ट्री भूल जाती है आपको.
0: हाँ
1: सो फेम चाहिए या सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एक एक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस कुछ भी करते रहो, बने रहो, साइट में रहो, नजरों में रहो, या थोड़ा सस्टेनेबल हमें रहना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो पिक एंड चूज करने की लिबर्टी होती है.
0: नहीं, सस्टेनेबिलिटी अगर आपको करना है तो थोड़ा फेम तो चाहिए. फेम के बिना आप सस्टेन कैसे करोगे, लाइक यू नीड, क्योंकि फेम के साथ मॉनेटरी सक्सेस भी आएगा तभी. आई मीन सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको, आपको पता है PR, मार्केटिंग, ये सब पे खर्च करना होता है, बिकॉज दैट्स हाउ एन एक्टर स्टेज इन लाइम लाइफ. तो नहीं तो वो, नहीं तो फिर पापा को कॉल करो.
1: पापा को कॉल करो से याद आया कि अब पापा क्या सोचते हैं, पापा का विजन अब कैसा है आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेकर. उस टाइम तो आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा होगा, किसी भी पेरेंट के लिए होता है कि जॉब छोड़ दी, स्टेबल जॉब छोड़ दी, कहाँ जा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाने जिसका भरोसा नहीं है. सो अभी वापस जा सकते हैं, अभी लाइक हाउ डू दे सेलिब्रेट योर सक्सेस.
0: सी अगेन, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ओवर देयर, दे आर नेवर गोइंग टू टेल मी, माई डैड इज नॉट गोइंग, तुम बहुत अच्छा एक्टर है, ये है, बट आई गॉट टू हियर इट फ्रॉम समवेयर. ही वॉज टेलिंग समवन, हो सुनो, हीरो के पापा हैं.
1: अरे वाह. सो आपको कैसा लगता है, अब जब लोग आपको, आपके फादर को कह रहे हैं हीरो के पापा हैं, आपको हीरो कह रहे हैं, आपकी इस जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आर यू हैप्पी नाउ, आपको लगता है कि हाँ वो मोमेंट आ गया जब ये सेलिब्रेशन लॉन्ग ड्यू था, बनता था, यू आर कंटेंट नाउ.
0: मैंने सोचा था मैं उतना खुश रहूंगा, पर मैं अभी

0: हैप्पी नहीं हूँ, मैं आगे का सोच रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है अभी हैप्पी रहने का। सो समटाइम्स व्हाट यू वेट फॉर थ्रू आउट योर लाइफ जब आ जाता है ना, तो शायद आपके पास वो वक्त नहीं होता है सेलिब्रेट करने का।
1: और कभी ऐसा नहीं लगता कि चलो आज तो सब पहचान रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर क्यों नहीं विश्वास किया जब मैं बहुत डिटर्मिंड था कि मैं कर सकता हूँ, उस वक्त क्यों नहीं सपोर्ट किया? कहीं ना कहीं वो मन में रहता है, कसक सी रहती है मन में.
0: यू नो दैट्स द वर्स्ट पार्ट, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। आई होप समडे इट हैपेंस दैट पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द जर्नी। मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल,
1: राइट.
0: काश वो उस समय आए होते जब मैं डिप्रेशन में था, मैं फाइट किया, तब काश आए होते कॉन्ग्रेट्स यू वॉन योर फाइट अगेंस्ट दैट डिप्रेशन, कॉन्ग्रेट्स यू टुक अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर जर्नी।
1: राइट.
0: काश ये मैसेजेस आए होते, ये मैसेजेस भी अच्छे हैं, आई फीलिंग गुड, पर काश उस समय भी आए होते।
1: तो अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते हैं तो अच्छा लगता है, और जब कोई क्रिटिसाइज करते हैं तब कैसा लगता है?
0: वो गलत है, गलत है, उसको पता नहीं
1: अच्छा, उसको
0: है।
1: पता नहीं है. यहाँ पे सब ठीक है, उसको पता नहीं है.
0: क्यों यार, जाओ
1: ओके
0: थोड़ा स्टडी करके
1: ओके ग्रेट. ये अच्छी स्ट्रैटेजी है ऐसे, यू नो, अपने आप को खुश रखने के लिए.
0: राइट
1: एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. हाउ डू यू सी योर सेल्फ इवॉल्विंग एज एन एक्टर, लेट्स से ज्यादा लंबा टाइम ही लेते, 3 ईयर्स डाउन द लाइन,
0: क्या 3 ईयर्स डाउन द लाइन तक तो आई डोंट
1: फोर्टीन
0: नो।
1: ईयर्स की ऑलरेडी जर्नी हो चुकी है.
0: हाँ 3 ईयर्स डाउन द लाइन,
1: चलिए 5 ईयर्स कर देते हैं.
0: हाँ 5 ईयर्स। सी आई टेल यू वन थिंग, एज एन एक्टर मैं रोज ग्रो करने वाला हूँ क्योंकि मैं रोज नया एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। बट इफ यू मीन द सक्सेस एस्पेक्ट ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन इट। अगर मैं वर्ड्स में पुट करूँ, वर्ड्स लिमिटेड है, इट्स गोइंग टू बी डिफाइन फॉर मी, इट्स अ फीलिंग। तो मुझे पता है, मुझे फील होता है, लेकिन उसको मैं वर्ड्स में पुट करके छोटा नहीं करना चाहता हूँ। सो फॉर मी इट्स दैट, दैट इज द सक्सेस विच इज अनडिफाइंड, विच इज मेड ऑफ यू नो नॉट जस्ट अचीवमेंट्स, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फेलियर्स, जर्नी, एंड फेलियर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि वही यूनिक है, वो डिफरेंट है आपके फेलियर से। सक्सेस का जनरली लोग एक मापदंड दिए हुए हैं कि ये
1: जी.
0: है सक्सेस, फेलियर्स का कोई मापदंड नहीं है, सबके अलग अलग फेलियर है।
1: तो चलिए, आज आप एक एक्टर हैं, सक्सेसफुल हैं, और आगे सक्सेस मिलेगी, हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं. अगर अगर एक्टर नहीं बन पाते इतनी यू नो
0: हाँ
1: स्ट्रगल के बाद भी, तो क्या वापस इंजीनियरिंग की जॉब पकड़ लेते?
0: क्रिकेटर बन जाता,
1: क्रिकेटर बन जाते.
0: क्रिकेटर बन जाता। हाँ थोड़ा लेट हो गया हूँ, मे बी फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता, स्पिन कराना पड़ता,
1: राइट.
0: तो वो बन जाता।
1: चलिए, यानी आपने एक बैकअप प्लान रखा हुआ था.
0: हाँ, क्रिकेटर तो मैं, मेरा पहला ऑप्शन था, फिर
1: ओके,
0: मुझे पता चला मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, तो
1: तो एक्टिंग कर
0: फिर
1: लेते हैं.
0: एक्टिंग कर लेते हैं। लाइक एनी इंडियन किड, क्रिकेट एंड फिल्म,
1: या सो हमारी कंट्री में क्रिकेट और फिल्म्स बहुत पॉपुलर है, सबकी पहली पसंद यही रहती है.
0: राइट।
1: लेकिन सबकी पहली पसंद उनकी पहली जॉब बन जाए जरूरी नहीं है. बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, मुंबई आते हैं, या मैं कहूंगी कि दिल्ली में भी आते हैं, यू नो, कि हम एक्टिंग करेंगे, हम थिएटर ज्वाइन करेंगे, और कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते. तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? आपकी जर्नी से वो क्या कुछ सीख सकते हैं? क्या टेक अवेज रहने चाहिए जो आपने खुद महसूस किया?
0: देखिए मेरे जर्नी से एक्चुअली मुझे पता है कोई नहीं सीखने वाला है, कोई दूसरे के जर्नी से सीखता नहीं है। मैं बहुत चीज़ें बोल दूंगा बट कोई कोई दूसरे के जर्नी से एक्चुअली सीखता नहीं है, गलतियाँ करना ज़रूरी है। मैं बस यही बताना चाहूँगा कि प्रॉपर एनालिसिस कर लो, अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, और आप वो छोड़ के यहाँ आने का कर रहे हो, आप कॉलम बनाओ, आप पेपर पेन लो, लिखो, स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, आपके अंदर क्या वीकनेस है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, फिर दो कॉलम बनाओ कि दिस इज द मैक्सिमम आई कैन अचीव, ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम आई कैन लूज। आप अब बिलीव करो कि वो मैक्सिमम आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर लियो, और बिलीव करो जो मैक्सिमम लूज करना चाहते हो वो भी कर लियो। अब यहां से सोचो ये अचीव करके कि जो आप लूज करना चाहते हो कर लियो हो, क्या अब आपको ये अचीवमेंट वर्थ इट लग रहा है?
1: राइट.
0: अगर आपको वही वर्थ इट नहीं लग रहा है तो इसमें घुस क्यों रहे हो? प्लानिंग तो बाद की बात है, लोग ये सब करने के बाद फिर देखते हैं अरे क्यों कर लिया यार, पर टाइम निकल
1: और
0: गया ना।
1: सबके सपने भी होते हैं ना कि हमें बहुत जल्दी बड़ा ब्रेक मिल जाएगा. आपने भी ये सोचा था, प्रोड्यूसर्स
0: हाँ
1: खड़े हैं बाहर लाइन लगा के.

0: बताया उनकी गलती,
1: जैसे
0: मेरी
1: उन,
0: गलती
1: हाँ
0: नहीं।
1: आपके केस में तो उन्हीं से गलती हो गई, लेकिन अब कोई सोचे कि सीधा सिल्वर स्क्रीन पर ही आना है, तो आप क्या कहेंगे कि एक्टर को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आज तक है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, थिएटर है, ओटीटी है, फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, सो कहाँ से शुरुआत करे एक एक्टर? एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं, लाइक यू नेम इट एंड दे हैव इट.
0: अब तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो गई है। अब तो कास्टिंग कॉल्स ना आप घर बैठे भी भेज सकते हो, आप घर पे ही बना के
1: जी
0: भेज सकते हो। तो अब चीज़ें बहुत आसान हो गई है
1: राइट
0: ये बनना। बट आपको एक्टिंग की शुरुआत करनी है ना, तो पहले खुद में करो,
1: घर पर एक्टिंग
0: पहले
1: करो.
0: घर पे एक्टिंग करो। और अगर मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है तो
1: अच्छा.
0: बाथरूम में के अंदर बंद करके आईने के सामने,
1: ओके,
0: तो
1: तो यहाँ से शुरुआत कर
0: यहाँ
1: देनी
0: से
1: चाहिए
0: शुरुआत कीजिए।
1: और फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करें कि
0: हाँ,
1: थिएटर करना है
0: थिएटर
1: या.
0: उठरी बात की बात है, पहले
1: अच्छा,
0: आईने के सामने अच्छा एक्टिंग कर पा रहे हो या नहीं।
1: और अच्छी एक्टिंग करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अभी से डेवलप कर सकते हैं? आपकी लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है, आपके एक्सप्रेशंस पे वर्क करना है. कहीं कहते हैं कि डांस सीखना बहुत जरूरी है, उसके आपकी बॉडी लैंग्वेज पर उससे बहुत एक अच्छा असर पड़ता है, आपके पॉस्चर पे आप एक ग्रेस आती है. सो कुछ ऐसा है जो साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब अपना होमवर्क कर कर ही आते हैं.
0: हाँ, मैं तो अभी कर रहा हूँ, मैं अभी डांस सीख रहा हूँ।
1: ओके, कौन सी
0: लाइक
1: डांस फॉर्म सीख रहे हैं आप? बॉलीवुड?
0: बॉलीवुड,
1: ओके.
0: बॉलीवुड सी मैं डांस जो करता हूँ ना, तो मैं एक्सप्रेशन तो दे देता था
1: राइट.
0: पर मेरा बॉडी वैसे नहीं मूव कर रहा था। सो अब सोच रहा हूँ उसे भी थोड़ा बेटर कर लूँ। सो आई एम लर्निंग बॉलीवुड, लर्न अ बिट ऑफ कंटेम्प्रेरी, थोड़ा बहुत सब कुछ सीख रहा हूँ डांस को।
1: वेल, दैट्स वेरी नाइस. और एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई आपके साथ. आपकी जर्नी के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, और सच में ये फील हो रहा है कि सपने देखने चाहिए सच हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, मिरेकल्स डू हैपन. आपकी जिंदगी में भी हुए होंगे, राइट?
0: या मिरेकल्स डू हैपन, मैजिक डज हैपन, इट्स यू बिलीव इन इट, इट्स योर बिलीफ इन इट विच मेक्स इट हैपन। जस्ट ये ध्यान रखना होगा कि वो होगा नहीं, आपका बिलीफ उस पे उसको होने होने पे मजबूर करेगा।
1: बिल्कुल, पेट दर्द है नहीं, लेकिन अगर
0: हाँ,
1: आपने सोच लिया कि
0: सोच लिया।
1: पेट दर्द हो रहा है तो
0: हाँ
1: पेट दर्द हो जाएगा.
0: हाँ इतना सोच लो कि आप दवा भी खा सकते हो और दवा खाने से वो ठीक
1: वो
0: हो
1: ठीक
0: जाएगा।
1: हो जाएगा.
0: हाँ
1: वेल, दैट्स अमेजिंग. आई एम श्योर कि ये जिस तरीके से आपने एक्टिंग सीखी और भी लोग सीखे, और अपने, ऑफ कोर्स अपने आपने बोला, क्योंकि अपने एलिमेंट्स आएंगे
0: हाँ
1: तो वो अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे.
0: राइट
1: आपकी इस जर्नी के लिए आपको डेफिनेटली बधाई देना चाहती हूँ, और आप
0: जी,
1: यहाँ आए, आपने टाइम दिया और इतने कैंडिड तरीके से अपनी बातें शेयर करी. थैंक यू सो मच. इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, स्पेशली पप्पू प्रसाद पांडे जी.
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू टू एवरीवन वाचिंग, थैंक यू टू पीवी वेव्स, थैंक यू टू आकाशवाणी, एंड इट हैज बीन अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर बीइंग हियर।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट. इस पॉडकास्ट का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर. ये पॉडकास्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது